ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें समाअत फरमाइए। जापानी हुकूमत ने मशरक वस्ता की सूरत हाल के तनाजुर में तवानाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए बुध को नए मनसूबों का एक पैकेज मुरतब किया है। इन मनसूबों में एक मुतबादल पाइपलाइन की तामीर के लिए इमदादी प्रोग्राम शामिल है, जो जापान को अपनाए हुरमत से गुजरे बगैर खाम तेल हासिल करने के काबिल बनाएगा। जून में जापान की वज़ीर आज़म ताकाइची सानाए ने सरकारी अहदेदारों को मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के जवाब में तवानाई सलामती के मनसूबों के लिए एक जामे पैकेज तैयार करने की हदायत की थी। पाइपलाइन की तामीर के लिए इमदादी प्रोग्राम के साथ साथ हुकूमत खाम तेल के एक जखीरे के लिए भी इकदाम करने का इरादा रखती है, जिसे नफ्था बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फॉसल फ्यूल पर इन्हिसार कम करने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर हुकूमत हिफाजती इकदाम यकीनी बनाते हुए जौहरी तवानाई के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर भी जोर देगी। जदीद तरीन पतले और लचकदार पेरोवस्काइट सोलर सेल्स के साथ साथ जियो थर्मल समेत तवानाई के दीगर काबले तजदीद जराए के लिए सनती बुनियादें तैयार करने के मनसूबे भी तश्कील दिए जाएंगे। वो डेटा सेंटरों में बिजली की बढ़ती

0: हुई तलब से निमटने के लिए कम तवानाई इस्तेमाल करने वाली चिप्स पर भी गौर कर रहे हैं। हुकूमत पावर एशिया फ्रेमवर्क के तहत तेल के जखायर को बढ़ाने के लिए दूसरे ममालिक से वसी ताउन का मुतालबा भी करेगी, जो एशिया और दीगर जगहों के ममालिक को माली मदद फ्राहम करता है। जापानी हुकूमत किसानों और माही गिरों को नकद रकूम अदा करने पर गौर कर रही है ताकि उनकी फरोख्त होने वाली पैदावार पर सारिफ टैक्स में कमी के असरात को कम किया जा सके। हुकूमत ने अगले साल अप्रैल से 2 साल के लिए खुराक पर सारिफ टैक्स को कम करके 1% करने का फैसला किया है। इस वक्त टैक्स की अमूमी शरह 10% है, लेकिन खाने पीने की अशिया पर ये 8% है। हुकूमत ने मंगल के रोज ऐलान किया कि वो मुतासरा किसानों और माही गिरों को नकद रकम देने का इरादा रखती है ताकि वह सप्लाई अशिया की खरीदारी के वक्त अदा किए जाने वाले सारिफ टैक्स की कमी को पूरा कर सकें। गैर जमाती नेशनल कौंसिल बराए समाजी तहफ्फुज़ ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया था कि खेती बाड़ी और माही गिरी में छोटे और दरमियाने दर्जे के ऑपरेटर्स को ज्यादा माली बोझ का सामना करना पड़ सकता है। उसकी वजह यह है कि उन्हें अपने आलात और दीगर साजो सामान की खरीदारी पर पहले की तरह 10% सारिफ टैक्स अदा करना होगा। हुकूमत ने यह भी कहा है कि वो टैक्स कटौती के असरात के हवाले से रेस्तरानों पर भी नजर रखेगी। घर से बाहर रेस्तरानों वगैरह में ताम पर सारिफ टैक्स 10% रहेगा, लेकिन खाना बाहर ले जाने पर यह 1% रह जाएगा। हुकूमत ने कहा है कि वो खाने पीने का कारोबार चलाने वालों की पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाने और टेकआउट पेश करने में उनकी मदद करने पर गौर करेगी। हुकाम अप्रैल में शुरू होने वाले आइंदा माली साल के मसौदा बजट में मज़कूरा मामलात को शामिल करने के लिए आने वाले महीनों में तफसीलात पर काम करेंगे।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। एक अमरीकी मीडिया इदारे का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मुबैना तौर पर हाल ही में मुतअद्दिद इत्तेहादी ममालिक के वज़राए ख़ारजा को बताया है कि अमरीका की जानिब से फ़िल वक्त ईरान के ख़िलाफ़ नए हमले शुरू किए जाने का इम्कान नहीं। और जापान के कुछ हिस्सों में एक और दिन ख़तरनाक गर्मी पड़ी है। फुकुओका प्रीफेक्चर में बुध के रोज़ दर्ज हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावज़ कर गया। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों के लिए विज़िट कीजिए NHK.JP/Urdu।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 26 अगस्त बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रीला जैन और वायला कवानो से सुने समाचार। एक अमेरिकी मीडिया केंद्र एक्सियोस के अनुसार विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हाल ही में कई सहयोगी देशों के विदेश मंत्रियों को बताया कि फिलहाल अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ नए हमले शुरू करने की कोई संभावना नहीं है। एक्सियोस ने मंगलवार को एक अमेरिकी अधिकारी और एक अन्य स्रोत के हवाले से यह खबर दी। यह खबर ऐसे समय आई है जब अमेरिका ने सोमवार को ईरान के खिलाफ व्यापक आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की। ऐसा लगता है कि अब अमेरिका ईरान पर सैन्य हमलों की बजाय आर्थिक दबाव बढ़ाने जा रहा है। एक्सियोस की खबर के अनुसार रूबियो ने संकेत दिया है कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों में आने जाने वाले जहाजों पर अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी के साथ साथ नए प्रतिबंधों के माध्यम से ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है। खबर में एक अन्य अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि ये नीति कम से कम नवंबर में होने वाले अमरीकी मध्यावधि चुनावों के बाद तक जारी रहने की उम्मीद है, जिसके बाद एक नए सैन्य अभियान पर फिर से विचार किया जा सकता है। खबर में कहा गया है कि यह एक और संकेत है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध से तंग आ चुके हैं और चाहते हैं कि यह कम से कम अभी के लिए समाप्त हो जाए। इस बीच इसमें यह भी कहा गया है कि अगर ईरान पहले हमला करता है तो रूबियो ने हमले की संभावना से इनकार नहीं किया है। जापान के कुछ हिस्सों में बुधवार को भी भीषण गर्मी रही। फुकुओका प्रिफेक्चर में बुधवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। फुकुओका हवाई अड्डे पर तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस था। पश्चिमी जापान के कई अन्य स्थानों पर भी तापमान 39 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। जुलाई के अंत में आए शक्तिशाली भूकंप से उबरने की कोशिश कर रहे कुमामोतो प्रिफेक्चर के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी रही। यात्सुशिरो शहर में दिन का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री और कुमामोतो शहर में 38.9 डिग्री रहा। बुधवार को जापान के 47 में से 37 प्रिफेक्चरों में तापघात की चेतावनी जारी की गई। अधिकारियों का कहना है कि लोगों को एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में पानी और नमक का सेवन करना चाहिए। तूफान सोदेल जापान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों अमामी और ओकिनावा से दूर जा रहा है, लेकिन तूफान का असर लंबे समय तक देखा जा सकता है। भारी वर्षा के कारण निचले इलाकों में भूस्खलन, बाढ़ और नदियों में उफान सहित ऊंची लहरों और तेज हवाओं से बचाव के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ऐसा लगता है कि अमामी और ओकिनावा तूफान के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में अब भी वर्षा बादल छाए हुए हैं। बृहस्पतिवार दोपहर तक के 24 घंटों में ओकिनावा प्रिफेक्चर में अधिकतम 120 मिलीमीटर और कागुशिमा प्रिफेक्चर के अमामी क्षेत्र में 100 मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान है। प्रचंड हवाओं की भी आशंका है। अमामी और ओकिनावा क्षेत्रों में हवाओं की अधिकतम गति 83 किलोमीटर प्रति घंटा और हवाओं के झोंकों की रफ्तार 126 किलोमीटर प्रति घंटा तक होने की आशंका है। ओकिनावा प्रिफेक्चर में लहरों की ऊंचाई 7 मीटर और अमामी क्षेत्र में 6 मीटर तक होने की आशंका है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जापान सरकार ने बुधवार को नई योजनाओं का एक पैकेज तैयार किया। इन योजनाओं में एक वैकल्पिक पाइपलाइन के निर्माण के लिए सहायता कार्यक्रम शामिल किया गया है, जिससे जापान को हॉर्मूज जल डमरू मध्य से गुजरने की बजाय नए रास्ते से कच्चे तेल की खरीद करने में मदद मिलेगी। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सनाई ने जून में पश्चिम एशिया की स्थिति को देखते हुए ऊर्जा सुरक्षा हेतु योजनाओं का एक व्यापक पैकेज तैयार करने के लिए सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिया था। पाइपलाइन निर्माण के लिए सहायता कार्यक्रम के अलावा सरकार कच्चे तेल के भंडार के लिए एक पहल शुरू करने की भी योजना बना रही है, जिसका उपयोग नेफ्ता के उत्पादन के लिए किया जाएगा। जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने के प्रयासों के तहत सरकार परमाणु ऊर्जा का अधिकतम उपयोग और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा सरकार अगली पीढ़ी के पतले और लचीले पेरोवस्काइट सौर ऊर्जा सेल

0: पर विचार कर रही है ताकि उनके द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों पर उपभोग कर में कमी के प्रभाव को कम किया जा सके। सरकार ने अगले साल अप्रैल से 2 वर्ष के लिए खाद्य पदार्थों पर उपभोग कर को घटाकर 1% करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में उपभोग कर की दर आमतौर पर 10% है, लेकिन खाद्य और पेय पदार्थों पर ये 8% है। सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि वो प्रभावित किसानों और मछुआरों को उनके द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाले उपभोग कर की भरपाई के लिए वित्तीय सहायता देने की योजना बना रही है। सर्वदलीय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा परिषद ने चिंता व्यक्त की थी कि कृषि और मत्स्य पालन में लगी छोटी व मझौली कंपनियों को बढ़ते वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ सकता है। इसका कारण ये है कि उन्हें उपकरण और अन्य सामग्री की खरीद पर पहले की तरह ही 10% उपभोग कर का भुगतान करना होगा। सरकार ने यह भी कहा है कि वो रेस्तराओं पर कर कटौती के प्रभावों पर नजर रखेगी। बाहर खाना खाने पर उपभोग कर 10% ही रहेगा, लेकिन टेकआउट पर इसे घटाकर 1% कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि वो रेस्तराओं को उत्पादकता बढ़ाने और टेकआउट सुविधा प्रदान करने में मदद करने पर विचार करेगी। अधिकारी आगामी महीनों में इसकी बारीकियों पर काम करेंगे ताकि इसे अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष के बजट के मसौदे में शामिल किया जा सके।
1: इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अमरीकी मीडिया केंद्र एक्सियोस के अनुसार विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हाल ही में बताया कि फिलहाल अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ नए हमले शुरू करने की कोई संभावना नहीं है। और जापान के कुछ हिस्सों में बुधवार को भी भीषण गर्मी रही। फुकुओका प्रीफेक्चर में बुधवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। और इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।